0: फिका दरगे सटिए मुथुका फिके पाए फिका मूर्ख आखिए पाना ले सुजाए।
1: अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल और सर तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैल जिन पड़े अंदर बार।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहिं जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमित तोज कह जै कोट इंद्र इंद्राण साहे सहान गण जै त्रिभवन महीप सुर नार असुर नेत नेत वन त्रिण कहत त्वय सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत कन हर बूंद बसौरो मावल कुसुम बसंत गनंत नायाव रव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुदर त्यान ज्ञान सत गुर के कब जन पाले उन्ह जो गावे पल्ले अमर दास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे पल्ले अमर दास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे सुन यार हमारे सजन एक करौ बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हौ फिरौ खोजंतिया तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पोरी दर्शन दीजै नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे एक तिल पीना तीरी जै प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चात्रिक जिवै तिसंतिया जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया दर्शन प्यासी दिन सरात चितवान दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत दर्शन देख जीवा गुर तेरा

देह नाम कर अपने चेरे, दर मादे ठाढे दरबार, तुझ बिन सुरत करै को मेरी, दर्शन दीजै खोल के वार। एक उत

एक अरदास पाठ कीरत की गोर राम दास राख हो सरनाई अंदर सच्चा ने लाया प्रीतम आपना तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अर सहो कुर सहो चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते सा हो सिर साहा दैसा जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावेसा सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दैसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसा हो।

गए मसकत का नानक ते मुख जले केती छुट्टी ना जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का।

सच्चा तुद तखत सिर छहा पातशाह नेहचल चौदिशत पौड़ी बड़ी वड़ा पात।

संत मन दुत यह कोटवारी मेरी दिवस रैन तेरे पाओ पलोसो केस चवर कर फेरी हमको कर तेरे दरबार पाऊं कहे आगे बदन पसार पूरब जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया न जाई तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई दागे हो हे सोरन मह जूझ बिन दागे भग जाई साधु होए सो भगत पछन हर लय खजाने पाई कोठरे मह कोठरी परम कोठी विचार गुरदीनी बसत कबीर कौ लेवहु बसत संवार कबीर दी संसार कौ लीनी जिस मस्तक भाग अमृत रस जिन पाया थिरता का सोहाग बहुत जन्म बिछड़े थे माधव यहो जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीवो चेर पायो दर्शन देखे लिख कत है ना छूटिया खिन खिन भूलन हार बखसन हार बखस नानक पार उतार सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सोभाए दर्शन परस आए गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी नूर और सह कुर सह चटिया तोद डिठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी
सोरठ एक ओंकार

अंतन बेरा तेरे जी अपहली जन रहा शेन शेन तान शीज जरा जनावा तब तेरे ओ कोई पानी ओ न पावा।

हृदराम की ना जप है सवेरा कहत कबीर कोई नहीं तेरा हृदराम की ना जप है सवेरा वाहे गुरु जी का खालसा।

0: तेज अपना आप जार सर्व कला भरपूर दिसै जत कता नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता श्लोक
1: पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत
0: दिवस रात।

निमाणियों के मान, नितानियों के तान, ओटियों की ओट, न्यासरियों के आसरा। तन तन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जी, तन तन बाणी गुरु

0: श्लोक भी महले पहले के लिखे तुंडी असराज की तुनी।
1: श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जनमानस ते देवते की लागी वार।
0: महला दूजा जे सौ चंदा गवह सूरत चढ़े हजार।

0: पहला सच्चे त्रिखंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे त्रिलोह सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवार सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे हैं लाख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोड़ सच्ची तेरी सिफ सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कचन कच
1: पहला पहला वड़ी वड़ाई जा वड़ा ना वड़ी वड़ाई जा सच ने आओ वड़ी वड़ाई जा नितल था वड़ी वड़ाई जा ने अलाओ वड़ी वड़ाई पुजे सब हाओ वड़ी वड़ाई जा पुछना दा वड़ी वड़ाई

पीने भोग भोग के होए पसमड़े और सिदाया वड़ा हुआ दुनीदार गल संगले हाथ चलाया के करनी।

0: सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
1: आउडी नजर करहि जे अपनी ता नजर सतगुरु पाया एहो जीओ बहुते जन्म भ्रमया ता सतगुरु शब्द सुनाया सतगुरु जे वरदाता को नहीं सब सुने हो लोक सुभाया सतगुरु मिलया सच पाया जिनी विच हो आप दुआया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
0: असा महला चौथा।

0: लाडल खासे ले लाडल खासे।
1: सलोक महला पहला, पड़ पड़ गड्डी लती है पड़ पड़ परिया साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डिया खात, पड़िया जेते बरस।

0: एको सच्चा सोई
1: हर पाए बारा कोरे रंगना सोए पहवज कम चढ़ाइया शर्म पातन होए नानक भक्ति जे रपै उड़े सोए ना कोई।

शब्दं सूर शब्दं सूत्र शब्दं प्रात करता है सर्व शब्दं एक शब्दों जे को जाने पे नानक ता का दास है सोई निरंजन देव।

शब्द मात्र ते उतार तरे, कवि काल ठाकुर हरदास तने, गुरु रामदास सार अपार परे। सत गुर मत

0: सतगुर नाम एकले मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो। तारण तरण खेण मात्र जाको दृष्ट तारे, शब्द रद विचार काम क्रोध खोवे जियो। जिया न सबन दाता अगम ज्ञान बिखे आता, एन सत्यान तावे पलक न सोवे जियो। जाको देख तदरिद्र जावे नाम सो निदान पावे, गुरमुख ज्ञान दुर मत मैल धोवे जियो। सतगुर नाम एकले मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो।
1: धर्म करम पूरे सतगुर पाई है, जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै। शब्द सार एक लिव लाई है, हुन जानै को तेरा अपार। निरपौ निरंकार अकथ कथन हार तुझै बुझाई है, परम पूले संसार छूटो जूनी संघार। जम को ना डंडकाल गुरमत त्याई है, मन प्राणी मुग्ध विचार अहनिस जप। धर्म करम पूरा सतगुर पाई है,
2: राज योग तखत दियन गुर रामदास। प्रथमे नानक चंद जगत पयो आनंद, तारन मनुख जन कियो परगास। गुर अंगद दियो निधान अकत कथा ज्ञान, पंचभूत बस कीने जमत ना तरास। गुर अमर गुरु श्री सत कद युग राखी पत, अगन देख

पास महसो जह देखा तह आवर न को सहज मिला मिलया परवाना नात स्मरणा न आवण जाना ठाकुर महदास दास महसो जह देखा तह आवर ना को गुरमुख भगत सहज कर पाइया

रहाओ सो गुर करो जे साच दृढ़ावन अकथ कथाव शब्द मिलाव हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकुर साच प्यारा तन मह मनुआ मन मह सचा

0: सब गवाया कर साद सुख मन आए बसे आदि इच्छा सब पुजाया
1: सदा कुर्बान की तागुल मिटो जिस आए बड़े आया कह नानक सुनो संतोष जबत प्यारो
0: सच्चा नाम मेरा आधार हो अजय पंच शब्द तत्काल सुभागे कर।

आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछे आरियायत, देग तेग फत हे बिरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खाल

0: दया कपा संतोख सूत जत गंढी सतवट एह जनेऊ जी का हिता पांडे घत ना टुटे नाम लगे ना हजरे ना जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौंकड़ मुँह लड़ाया वे चौंके पाया सिखा कण चढ़ाया गुर ब्राह्मण थया ओम वाह छड़ पया बित गया
1: महला पहला लख

0: तंदे लायदार द्रुपटी जे करे सुलताना धाव करायदा दरवंगल बिखना पायदा बिखना पायदा बिखना पायदा
1: औड़ी चित्ते अंदर सब को वेक नदरी हेठ चलायदा आपे देवड़िया या आपे कर्म करायदा वट हो वड़ा वट मित्री सिरे सिर तंदे लायदा नदर पठी जे करे सुल्ताना का हुकरायदा दर मंगन पे खना पाएदा दर मंगन।